0: number one hit music station.
1: That's the way to wake up.
2: The best part of my mornings.
3: That was such an odd start to the day.
4: You get it?
5: आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक हरेक दिन पढ्नुहोस्। बजार बजार का समाचारहरुका लागि नयाँ प्रविधि अवसर तथा व्यावसायिक गतिविधि का लागि लगानी बचत बैंकिंग तथा बीमा सम्बन्धी जानकारी का लागि शेयर बजार को मिहिन लेखाजोखा तथा देश विदेश का विश्लेषणात्मक समाचार का लागि हरेक दिन पढ्नुहोस् आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक हरेक दृष्टि आर्थिक कोण।